0: हेलो महोर मुईवाने मेरे रे है
1: उगांडा
0: मु Burundi
1: एगो
0: किगानी रोड चाहरी वे अबान बारे मो बिंदी भी होगो अतुवाशिमिले चाने निज़